कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5-6 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी उद्घोषिका आरजे लूसी, और आज के इस पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांजांग तथा तकनीकी अभियंता जे कालो। आज की तारीख है 1 जुलाई, और हमेशा की तरह आज भी हम लाए हैं आज के इस प्रसारण में ढेरों जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो इसी के साथ आइए हम आज के पहले प्रसारण की शुरुआत करते हैं। अभी से ठीक 6 बजे भी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे दोनों पोलो भक्ति गीत जमुना श्रीराम की आवाज में। 6:40 को प्रसारित होगा गालो भाषा में समाचार, और 6:45 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं 7:15 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट, और ठीक 7:45 को आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार। 7:40 को प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार, और ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज, और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

दोस्तों 8:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और ठीक 9 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक उसी के बाद 9:10 को प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्मी गपशप। फिल्मी गपशप कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे फिर से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओ फिर 10:10 को प्रसारित होगा आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और ठीक 11 बजे उसी के बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 11:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी लहर और ठीक कार्यक्रम फिल्मी लहर के बाद 11:30 को आप सुन पाएंगे वेस्टर्न मेलेडीज। ठीक उसी के साथ 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक 12:30 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट परिचय जहां आप सुनेंगे एक वारदात ऑन इडू ट्राइब बाय जमुनो रोंडो। ठीक उसी के बाद 1 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों ये था अब से लेकर दिन के 1 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार ठीक 6 बजे।

एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत। कुछ ही पलों में भी आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार।
1: यकस्वनी इतानग्र तनगदम रोगम जब अमदाला तेनलो पोलोग अलो लोकेन अरोगो घलो मेंकेन अबालोक मेलेन जिदाग नांगो मरियो मत इसग नुग इस्तेदो के जिदो को दिया माजब ओदाक ओके मोक अमने पूम पूम ब आदा कुलाब हिबुक हिलो ब नम रिक गदम ने इग कुनाम अमने कालताल दोकला मलोग गाल अलो तीस बे अलो ओगो यूनियन मिनिस्टर निर्मय शिवराज सिंह चौहान और निर्मय किरण रिजिजू मुंज ईटानगर लो पुलिका यो यो ब कागुर तागुर सा कादु कु नदे एक एक न अबा अबा रुगा दम ने हेनम लगा ब ओगो मुंज के अम ब पुलिक जिनाब अम कालताल दोकला सिप मिस्टर निर्मय पेमा खांदो सिन माज ब कोई ज्यादा लसिन इका ओके सोशल मीडिया लो सिन जिले दागला निर्मय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिन कोई ज्यादा लसिन इका नोके हम ब मुनुग अरुणाचल प्रदेश स्टेट एम ने आया ब मुपांगो पा दाकला मिनिस्टर अनिगो कागो तागो ताब पोताई नाम एम काग दोकला मुनुग असिना पुका माजिब मुकेन ज्यादा दुनाक ओके असजब मुदुनाक एमलासिन दिनसिजब एलएनजी टू ओके यूनियन होम मिनिस्टर नर्म अमित शाह सिंह चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने होक इने कुन गे लोन अलो हुम्बर ओगो न्यू दिल्ली बोलो तोम दुम गेला इज गे पुम आदा लोक याद नगो नस्तो दो बे मोतु कुदे ओको अबा गदम सिन अलिब तका का पगला सिन इतु ओक म अंब तका का पग दकला योब इला सिन रिलीफ अबा हिम नेक अलजब कागुर तागु रु लग जुका अमला सिन तो कहितु कु अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक रिटायर्ड मलोग गाल आलो त्यूस दे ओगो एयर कमांडर आर दी मोसावी रिटायर डायरेक्टर कम सेक्रेटरी ऑफ द राज्य सैनिक बोर्ड ने लोक भवन ईटानगर लो दूर ही दाखला दिन शुरू न कबा गो बातु ओगो मुनि के कबा दू दाखलो या का जागो स्टेट ग वेलफेयर ये गो दू गो अब आलो सिन जिंगमिंग कोमिन हितु ओक मुन्य हम पास तू कु लक लोक सिपाही बिकातोरे कुला रिटायर कुन एक्स सर्विसमैन बीर नारीस वार मोदक लोक येलिक कुन सिपाही वेटरन्स मुनुक नामरुम तुम आलु गदम ने योब इलासिन राज्य सैनिक बोर्ड ग अरा लोक याद नगो कागुर तागुर सागो कादा कुन दु एक एक न अबा लोक मलेन मा गेकला अलुब कागुर तागुर रु लग जुका अनासिन पास तुकु ओके सिप मिस्टर नर्म पेमा कांदू ने सिंह गवर्नर मु मलोग अलो ओगोई कुदा लोक भवन ईटानगर लो तोम दुम गेला इजग निदो कोदिया माजब ओदक लोक याद नगो नमरिक एमने पूंब आदगला मोत्र कतर तुक दु एकना मोत्र कुनाम अके नके नम रूम तुम गा दम सिन आयन जाब कागुर तागुर इरु लग जुका एमला सिन तो कयो क हिका को मुग अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग हेल्थ मिनिस्टर बे दू दू कुन व्यरम वागे मु मेनलेन का मुग स्टेट होक लगा ब मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU गो मुलुक जिगो रुता दू कुन नक अमला मेंटू एक्सिन इज ग वाइब्रेंट ब्लेंस प्रोग्राम ग अंडर लॉक एम काल ताल दोकला ओगो मिनिस्टर मु मेनला हक न अबा गदम ने बॉर्डर एरिया लॉक दोलू दोन गदम ने लगा जाबक ब मुदक मोदक कुला स्कीम्स अबा हिगिम लालक तुन मक अनासिन मेम पजिता तू ओके हक न मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU हिगिम ने मोलिक कुयम ने आले देने ओगो ओद ओदना दोलुल रिंगोलोक गुमिन होइन गदग लगाब अलिब एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिक डायग्नोस्टिक सर्वेस मेडिसिन हक हक न अबा रु गदम ने हुबिदा अम अलिब पारुता दुकुनक अमलासिन अलजाब मेनकेन जितु तनगद नुनु घलो मेनकेन आगम हिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तपदु अरुणाचल प्रदेश स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर बे दू दू कुन्न नर्म पी डी सोना में होक इने कुन ग लोन अलो हुम्बर ओगो न्यू दिल्ली बोलो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 अमला प्रोग्राम इदाक लो दू लिख तो एम दू लिख मुर्दा गला मुग स्टेट होक हिलोलो ब फ्लैगशिप स्कीम्स अबा लोकम ने अलुब इसी में से मानम गुरु गदम ने नरी सरकार एम ने अलुब मेंजिलासिन इका डिप्टी कमिश्नर पापुम पारे लोपसांग सिरिंग में मलोग घाल आलो ट्यूसडे अगस्त डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल यूपिया लो एजुकेशन के बाबलो दिन शुरू ने कतिक बागो टीचर्स गदम ने गोकुम लाल तुकुला दुख तुकु अक ने कबालो डीसी जिगोम में तु हिंजी गए सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट एम काल ताल दोकला आल देने अनि आलो तोलो हिंदीगम पनम अलियारूब इलाकुस का अमला सिंह दिन सिजाब कबाम ने बाक तू ओक अक न कबा दू दक ओगो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट लोक प्रिंसिपल हेड मास्टर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ बीआरसीसीएस सीआरसीएसएस ओक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स रू गद एजुकेशन लोक गद सिंह दूलक मीन्स का दिस तवांग नामले तदिबाम तो दिस तवांग नांगमल अंगमो ओक दिस तवांग लोक लेकी गंबू मुन्य सेवा आपके द्वार 2.1 कैंप एमने मागो दोलू लो मलोग आलो लो मुलुक का एक ने प्रोग्राम एमने मलोग आलो गाली लो गाली आलो लो मुलुक दोलो मुमेंटो हक ना प्रोग्राम इदाक लो इस गर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR केटी बचाओ अभियान ओके सेंसस ऑपरेशन ओके कब कब सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स एंड सर्विस अब रोग दर्शन अलजाब मेंटम मुतम नसे इतु ओके वेदर अब लो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर MCI गद 19 डिस्ट्रिक्ट ओके ओगो पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट आताला

0: ಇದು ಕೋದಿಯ ಮಾಜಿಬ ಒಬದೇದಾಗ ನಾಕ ಎಂಲಸಿನ್ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಥ ಬೇ ಕಾತಂ ತಾತಂ ಲಸಿನ್ ಈಗ ಒಕ್ಕ ಕಬ ದಿಸ್ತಿಕ್ ಓದ್ ಓದನ ಲೋಸಿನ್ ದೊಯ್ ದೋಯಾಗ ಬೇ ಸಿನ್ ಒಗೊ ನಿದುವಸಿನ್ ಅತ್ತಬ ಒಬದೇದಾಗ ನಾಕ ಎಂಲಸಿನ್ ದಿಂಚಿ ಜಾಬ ಮೇಂ ಪಾಜಿ ತಾಕ ಕ ತನಗ ದ ಹಿರ್ಗ ಗಾಲೋ ಮೇಂಕೆನ್ ಅಗ್ಮ ಎಗ
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों भी आपका मैं स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे में, और चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन गीत के साथ। और इस गीत का नाम है मैं चली, जिसे गाया है अपनी सुरीली आवाज में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। संगीतकार है आरडी बर्मन। फिल्म है परोसन से।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजेलू से और आप सब सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे प्रिय कार्यक्रम सुबह सवेरे में। उम्मीद करती हूं कि आपका ये दिन खुशियों और उत्साह की अच्छी सेहत के साथ शुरू हो रही है। हर नई सुबह हर नई उम्मीद लेकर आती है और अगर सेहत साथ हो तो दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। दोस्तों, हम सब अपनी रोजाना की जिंदगी में काफी व्यस्त रहते हैं। काम का दबाव हो, अनियमित खान पान, काम, शारीरिक गतिविधि और तनाव के कारण हम कई बार अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये आदतें शरीर में कुछ ऐसे बदलाव लाती हैं जो शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन आगे चलकर गंभीर बीमारियों के रूप ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड। बहुत से लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के बारे में कम जानते हैं, इसलिए इसे आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का चिकना पदार्थ है जो काफी चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसकी मदद से हॉर्मोन्स बनते हैं, विटामिन डी का निर्माण होता है और शरीर की हर कोशिका अपना काम सही तरह से करती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तभी ये फायदेमंद पदार्थ नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है LDL, जिसे आमतौर पर बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और दूसरा है HDL, जिसे कहते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल। LDL जब अधिक हो जाता है तो ये हमारी रक्त यानी हमारे नसों की दीवारों पर जमने लगता है और धीरे धीरे ये हमारे नसें सक्रिय हो जाती है और खून का प्रभावित होने लगता है। इसके विपरीत HDL कोलेस्ट्रॉल शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है और हृदय को सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड भी शरीर में पाए जाने वाली एक प्रकार की चर्बी है जिसे हम अपनी जरूरत से अधिक कैलोरी लेते हैं, खासकर जैसे कि अगर मीठा खाएं, तेल, घी से भरपूर भोजन, तो शरीर उन अतिरिक्त कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा कर लेता है। बाद में जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब वही ट्राइग्लिसराइड ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर यही इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे बड़ा खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते ही क्यों है? इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि बहुत अधिक तेल, घी, मक्खन, फ्राइड फूड्स, ये सब भोजन खाना, बहुत ही अधिक मिठाई खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना और पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण भी हो सकता है और लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने से भी हो सकता है। मोटापा भी इसका कारण है। धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन, मधुमेह यानी अगर आपको डायबिटीज हो, और ऊंचा रक्तचाप जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, और कई बार ये समस्या वंशानुगत यानी परिवार से भी मिल सकती है।

ये जेनेटिक हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। ये आपको जान लेना चाहिए कि आपको आश्चर्य होगा कि अधिकतर लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ट्राइग्लिसराइड का कोई स्पष्ट लक्षण ही दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसे कई बार साइलेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं। कई लोग बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते रहते हैं लेकिन उनके शरीर में अंदर धीरे धीरे रक्त वहिनियों में चर्बी जमती रहती है। इसी वजह से समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहां हम बात कर रहे थे हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि हम अगर इसका इलाज नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई ट्राइग्लिसराइड है तो उसके कारण काफी धमिया हो सकती है। उससे आपका ब्लड ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है।

0: प्रयोग भी सीमित मात्रा में कीजिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ अच्छा भोजन खाने से ही काफी नहीं होता, शारीरिक एक्सरसाइजेस भी उतना ही जरूरी है। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलना, साइकिल चलाना, योगा करना या हल्का फुल्का व्यायाम करना हृदय को मजबूत बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या लंबी देर तक बैठते हैं तो हर एक घंटे बाद कुछ मिनट चलने की आदत जरूर डालिए। तो बात करते हैं तनाव की। तनाव भी हमारे सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान, प्राणायाम, अच्छी नींद और अपने परिवार के साथ समय बिताना एंजाइटी यानी तनाव को कम करने में मदद करता है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी उतनी ही जरूरी है। अगर डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी है तो उसे बिना सलाह के कभी बंद ना करें। कई लोग कुछ दवा खाकर जब रिपोर्ट ठीक देखते हैं तो दवा छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की सेहत अलग होती है, इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही छोड़नी चाहिए। याद रखिए, घरेलू नुस्खे या इंटरनेट पर मिली अगर आप जो कुछ भी फेसबुक में वीडियोस वगैरह देखते हैं और उससे सलाह लेते हैं तो वो हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। इसीलिए किसी भी इलाज को शुरू करने से या बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग भी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, सेहत ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं और जीवन का हर पल खुशी से जी सकते हैं। इसलिए चलिए आज मेरे साथ लेते हैं एक छोटा सा संकल्प। संतुलित भोजन खाएंगे, रोज थोड़ा व्यायाम करेंगे, धूम्रपान और शराब से दूर रहेंगे, अपना वजन नियंत्रित रखेंगे और समय समय पर अपनी सेहत की जांच जरूर करेंगे। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोचिए और हर सुबह को एक नई उत्साह के साथ अपनाइए। मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: श्रोता, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आपातानी भाषा में समाचार। या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कल श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आर जलूसी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग इंफरटेनमेंट में। हर सुबह अपने साथ एक नई रोशनी, नई उम्मीद और कुछ नया सीखने का अवसर लेकर आती है। और

जब हम अपने इतिहास को याद करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हर तारीख अपने अंदर कई कहानियां समेटे होती है। कुछ कहानियां संघर्ष की है तो कुछ उपलब्धियों की और कुछ फैसलों की जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। तो आइए आज जानते हैं 1 जुलाई की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्ता के बारे में। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई का दिन महत्वपूर्ण कई कारणों से याद किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्म जयंती और पुण्यतिथि दोनों के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को और उनका देहांत भी हुआ था 1 जुलाई 1962 को। वे एक कुशल डॉक्टर होने के साथ साथ एक प्रभावशाली प्रशासक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर्स डे हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर सिर्फ रोग का इलाज ही नहीं करते बल्कि हर जीवन की नई उम्मीद भी देते हैं। महामारियों, प्राकृतिक आपदा और अन्य कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर्स की सेवा वास्तव में सराहनीय रही है। दोस्तों, इसी दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, 1 जुलाई 2017 को भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी को भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधारण में से एक माना जाता है। इसके लागू होने से देश के कई अप्रत्यक्ष करों को एक व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है, यानी सब टैक्सेस को एक साथ कर दिया गया है। इसका उद्देश्य था व्यापार को आसान बनाना और प्रणाली के अधिक पारदर्शी बनाना और देश भर में एक समान बाजार की अवधारणा को मजबूत करना। आज भी जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अब चलिए भारत के इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्गठित किया गया था। क्या आपको मालूम था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? अगर नहीं तो अभी आप जान गए हो। तो ये कदम भारत के बैंकिंग इतिहास में एक नए युग की शुरुआत था। इसके बाद बैंकिंग सेवाओं को गांव-गांव और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का प्रयास अधिक मजबूत हुआ। अब नजर डालते हैं विशेष इतिहास पर। दुनिया भर में 1 जुलाई का महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहा है। 1 जुलाई 1867 को कनाडा में अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनीज को मिलाकर एक नया राष्ट्र का गठन हुआ था। इसी अवसर को कनाडा डे के रूप में मनाया जाता है। ये कनाडा के राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह 1 जुलाई 1997 को हांगकांग का प्रशासन ब्रिटेन से चाइना को सौंपा गया। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसे आज भी इतिहास के एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में 1 जुलाई की अपनी पहचान रही है। तो दोस्तों, हम जारी रखेंगे हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग इंफरटेनमेंट, जहां आप जानेंगे 1 जुलाई का महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये बेहतरीन गीत। और इस गीत का नाम है आज तुम पर प्यार आया है और ये आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में फिल्म दयावान से।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब पेश है अगला कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी RJ लूसी और आपका इस कार्यक्रम सदाबहार में स्वागत करती हूं।

दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून अपने पूरे जोर पर है। हरियाली से सजी पहाड़ियां, बादलों से घिरी वादियां और रिमझिम से लेकर मुसलधार बारिश तक यहां का मौसम जितना सुंदर दिखता है उतना ही सतर्क रहने का संदेश भी देता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मौसम पर। राजधानी ईटानगर और पापुमपारे जिले में आज दिन भर बादल छाए रहने वाले हैं और बारिश के कई दौर चलने की संभावना भी है। कुछ स्थानों पर माध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है, इसलिए घर से निकलते समय पूरी छाता या रेनकोट अवश्य साथ रखें और यात्रा करते समय सावधानी बरतें। राज्य के अन्य जिलों में बातें करते हैं तो तवांग, वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्का से माध्यम वर्षा होने की संभावना है। लोअर सुबानसरी और कुरुंग में क्रादादी कई पन्योर और पाके केसांग में स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। अपर सुबानसरी, सियांग के सभी क्षेत्रों, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, तमसायन, जाओ चांगलांग और तिराप लोंगडिंग में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है और सड़कें फिसलने वाली हो सकती है। दोस्तों, लगातार बारिश हो रही है और उसी के कारण अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और कुछ स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है, इसलिए अनावश्यक यात्रा से बचने की समझदारी है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की। यदि आप किसी पहाड़ी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और आगे पत्थर गिरने, मिट्टी खिसकने या पानी का तेज बहाव दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। जल्दी पहुंचने की कोशिश कभी भी बड़े खतरे के कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा गीतों का ब्रेक और आप सुनेंगे हमारे ये अगला गीत जो है पत्थर पतझड़ सावन बसंत पहाड़।

दोस्तों लगातार बारिश हो रही है और उसी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और कुछ स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है, इसीलिए अनावश्यक यात्रा से बचने की समझदारी है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की। यदि आप किसी पहाड़ी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और आगे पत्थर गिरने, मिट्टी खिसकने या पानी का तेज बहाव दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। जल्दी पहुंचने की कोशिश कभी कभी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। कभी भी बहते हुए पानी को पैदल या गाड़ी से पार करने का प्रयास न करें। बहने वाले पानी देखने में कम गहरा लगे लेकिन उसका बहाव बहुत तेज हो सकता है। यदि आपके पास बादल फटने जैसी स्थिति हो, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट, अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाए तो पहाड़ी से तेज आवाज आए तो तुरंत ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थान की ओर चले जाए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों को पालन कीजिए। मोबाइल को पूरी तरह से चार्ज रखें, अगर हो सके तो साथ में आप पावर बैंक रखें, टॉर्च, पीने का पानी, कुछ सूखा खाद्य पदार्थ, जरूरी दवाइयां और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक सुरक्षित बैग, प्लास्टिक बैग में आप रख सकते हैं ताकि आपातकालीन में तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। बारिश के दौरान बिजली के खुले तारों, कमजोर पुलों और पानी से भरे गड्ढों से दूर रहें। दोस्तों अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गति धीमी रखें, हेडलाइट्स का प्रयोग करें और पहाड़ी मोड़ों पर हॉर्न जरूर बजाएं। किसी भी रोड ब्लॉक या लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में पुलिस, एसडीआरएफ या प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। हमारे किसान भाई बहन भी मौसम का पूर्णवरण नजर रख रहे हैं और खेतों में काम करते समय बिजली की गरज और तेज बारिश के दौरान खुले स्थानों से आपको दूर रहना चाहिए। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस समय अरुणाचल प्रदेश

0: देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण संदेह बंद होने और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि बिना जरूरत लंबी यात्रा ना करें। अगर यात्रा अत्यंत बहुत ही इमरजेंसी आवश्यक हो तो रवाना होने से पहले सड़क की स्थिति और मौसम की जानकारी अवश्य आप चेक करें। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, प्रकृति का सम्मान करना भी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सतर्कता, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय किसी भी दुर्घटना को टाल सकता है। इसी तरह संदेश के साथ आज का मौसम बुलेटिन यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मौसम संबंधी आधिकारिक सलाहों पर ध्यान दीजिए। सुरक्षित रहिए और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार या आकाशवाणी ईटानगर कारोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रोल रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी

0: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर के इस खास कार्यक्रम हेलो ईटानगर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस समय हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हैवी रेनफॉल देखने को मिल रही है। कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ सड़कें बंद हो गई हैं, कई जगहों पर रोड कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नारीकोयू एरिया जो कि पासीघाट डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें कई बारिश लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसी तरह नीपको प्रोजेक्ट के आसपास के इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट और तेज बारिश के कारण हमें ये देखने को मिल रहा है कि फ्लैश फ्लड्स जैसे सिचुएशंस अचानक आ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभावित सभी परिवार सुरक्षित रहें और स्थिति जल्द ही सामान्य हो। दोस्तों, जब हम ऐसी घटनाएं हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमारा मन एक सवाल में जरूर आता है। आखिर अरुणाचल प्रदेश में हर साल मॉनसून के दौरान लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों देखने को मिलती है? इसका जवाब हमारे राज्य की ज्योग्राफी में छुपा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। हमारा राज्य ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और उनके बीच से निकलती हुई अनेक नदियां हैं। ये सब मिलकर अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति का एक अनमोल उपहार बनाते हैं। लेकिन इसी पहाड़ी ज्योग्राफी की वजह से मॉनसून का दौरान यहाँ काफी चैलेंजेस भी देखने को मिलता है। हर साल जून से सितंबर के बीच साउथ वेस्ट मॉनसून एक्टिव हो जाता है। ये मॉनसून बे ऑफ बंगाल से बहुत सारी मॉइस्चर लेकर आता है। जब ये मॉइस्चर से भारी हवा अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों से टकराती है तो हवा पर उठती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कई बार कुछ घंटों के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि जमीन पर उस पानी को संभाल नहीं पाती। इस स्थिति को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये नहीं होता कि बादल सच में फट गया है। इसका मतलब है कि बहुत छोटे एरिया में बहुत कम समय के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल हो जाए। जब इतना सारा पानी एक साथ गिरता है तो छोटे नाले भी अचानक तेज बहाव वाली धाराओं में बदल जाते हैं। पहाड़ों की मिट्टी पानी से भर जाती है और धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। फिर मिट्टी और पत्थर नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं और लैंडस्लाइड हो जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी सड़कें पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। ये सड़कें हमारे लिए जीवन रेखा की तरह है। इनके माध्यम से गांव, कस्बे और शहरों को संपर्क बना रहता है। लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो कई बार पहाड़ी ढलानों से पत्थर गिरने लगता है और रोड ब्लॉक भी हो जाता है। इसीलिए मॉनसून के दौरान ट्रैवल करते वक्त हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी पहाड़ी रूट पर सफर कर रहे हैं तो निकलने से पहले वेदर फोरकास्ट और रोड कंडीशन की जानकारी जरूर लें। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस किसी रोड को बंद करके रखती है तो उसका पूरा तरह पालन कीजिए। कभी कभी शॉर्टकट लेने या बंद सड़क से गाड़ी निकालने की कोशिश मत कीजिए। कुछ मिनट की जल्दबाजी कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी एक छोटा सा निवेदन है, बारिश के दौरान स्पीड हमेशा कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और पहाड़ी मोड़ों पर हॉर्न जरूर बजाएं। अगर आपको आगे सड़क पर पत्थर गिरे हुए दिखाई दें या पानी का तेज बहाव नजर आए तो गाड़ी रोक दीजिए और सुरक्षित जगह पर इंतजार कीजिए। कभी भी बहाव वाले पानी को क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखने में कम लगने वाला पानी भी बहुत तेज फोर्स के साथ बह सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं हमारा कार्यक्रम हेलो ईटानगर का पहला गीत। पहला गीत आप सुनेंगे ये तारा रमपम फिल्म से है, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने अपनी सुरीली आवाज से और इस गीत का नाम है शोना।

दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे मॉनसून्स के आफत के बारे में, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में लेकर आती है अधिक रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं और अगर आपको लगातार पत्थर गिरते हुए दिखाई दे, जमीन में दरार नजर आए या पहाड़ से अजीब सी गरज की आवाज सुनाई दे, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना ले। ये लैंडस्लाइड की शुरुआती संकेत हो सकता है। ऐसे समय तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं और आसपास के लोगों को भी सतर्क कीजिए। मॉनसून का मौसम हमें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदार और सतर्क रहने का भी संकेत देता है। हमारी एक छोटी सी सावधानी हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी को सुरक्षित रख सकती है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दे, सिर्फ ऑफिशियल वेदर अपडेट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजरी पर ही भरोसा रखें। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। मुसीबत के समय हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी उम्मीद के साथ मॉनसून का ये दौर सुरक्षित तरीके से बीतेगा। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेके सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। सतर्क रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे और प्रकृति का सम्मान करते हुए हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आकाशवाणी ईटानगर में हेलो ईटानगर कार्यक्रम सुनते रहिए। नमस्कार। इसी के साथ हमारा ये म्यूजिक का सिलसिला जारी रहेगा और आप सुनेंगे अगला ये गीत, जो है फटा पोस्टर निकला हीरो से। अतीफ असलम की आवाज में इस गीत का नाम है जन्म जन्म।

को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को अब समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान एक नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थीं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। ताजा समाचार मिलने तक मेक्सिको 2-0 से आगे है और राउंड 32 में मेक्सिको तथा इक्वाडोर के बीच मुकाबला चल रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप पर। आकाशवाणी के इस फिल्मी और दिलचस्प अंदाज का भरपूर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी और उम्मीद करती हूं कि आपका दिन मुस्कुराहट के साथ शुरू हुआ होगा। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो अगले कुछ मिनट होने वाले हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी कुछ ताजा खबरों, अपकमिंग मूवीज, ओटीटी रिलीजेस और कुछ इंटरेस्टिंग फिल्मी गपशप के साथ। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स की। जुलाई का महीना बॉलीवुड लवर्स

के लिए काफी एक्साइटिंग नजर आ रहा है। इस महीने बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है और सबसे ज्यादा चर्चा में है अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी एक एक्शन स्पाई अवतार में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉमेडी के शौकीन दर्शकों के लिए धमाल 4 भी रिलीज होने जा रही है। अजय देवगन और धमाल गैंग एक बार फिर से हंसी का जबरदस्त डोज देने के लिए तैयार है। साथ ही बेबी डू और डाई, डू डाई डू और कुछ नए टाइटल्स जुलाई के साथ रिलीज हो रही हैं और इस कैलेंडर का हिस्सा है। तो श्रोताओं, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जो है चांद तारे, जीएस बॉस फिल्म से।

श्रोताओं, आपका स्वागत है आकाशवाणी के ये कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के। अगर आप घर बैठे मूवीज और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस महीने भी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। नेटफ्लिक्स हो या प्राइम वीडियो, जियो, हॉटस्टार, सोनी लिव और दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर कई नई शोज और फिल्में रिलीज होने वाली है। सनी देओल की लीगल थ्रिलर फिल्म है इक्का का ओटीटी डेब्यू काफी चर्चा में है। इसके अलावा चांद मेरा दिल, बंदर और कई नई हिंदी टाइटल्स भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाले हैं। इंटरनेशनल कंटेंट के फैंस के लिए भी जुलाई का महीना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अब वक्त है फिल्मी गपशप का। बॉलीवुड में इस साल कई खबरों ने फैंस का ध्यान खींचा है। आमिर खान की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से हेडलाइंस में आ रही है जब उनकी शादी की खबर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी। वहीं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर भी फैंस के बीच खुशी का माहौल रहा है। दोनों से जुड़ी अच्छी खबरें काफी वायरल हो रही हैं। इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट्स, नए कोलैबोरेशंस और बड़े अनाउंसमेंट्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। वैसे बॉलीवुड की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर फ्राइडे एक नई कहानी लेकर आता है। कभी एक्शन, कभी रोमांस, कभी कॉमेडी और कभी सस्पेंस। इसी वजह से सिनेमा का जादू कभी पुराना नहीं पड़ता। आजकल एक और ट्रेंड काफी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े स्टार सिर्फ थिएटर्स ही नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे दर्शकों को हर हफ्ते नया कॉन्टेंट देखने का मौका मिल रहा है। अब आपके पास चॉइस भी ज्यादा है और एंटरटेनमेंट भी ज्यादा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीकेंड फैमिली के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो जुलाई का कैलेंडर काफी एक्साइटिंग है। चाहे आप एक्शन पसंद करते हो, कॉमेडी या थ्रिलर, इस महीने हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है। और इसी के साथ फिल्मी गपशप का यह पहला सफर यही थोड़ा सा रुकता है। अगले हिस्से में हम फिर से बात करेंगे कुछ फ्रेश बॉलीवुड अपडेट्स, स्टार्स के नए प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक रिलीजेस और बॉक्स ऑफिस की दुनिया से जुड़ी कुछ मजेदार खबरें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, फिल्मों से प्यार बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, अब वक्त है अगला गीत सुनने का, जो है आप सुनेंगे अभिजीत की आवाज में, चलने लगी है हवाएं।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप या आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation.
4: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट,
5: विजया मेहता।

0: ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, "The Act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers." He said the Act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.50 rupees today. According to Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, will arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This will be the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. National Doctors' Day is being celebrated today across the country to honour doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The theme for this year is Behind the Mask, Who Heals the Healers, which highlights the importance of supporting the mental, emotional and physical well-being of doctors who dedicate their lives to caring for others. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the doctors of the country by saying that their hard work, compassion and commitment form the backbone of India's healthcare system. 78th National Chartered Accountants CA Day is being celebrated today across the country. The day marks the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949 and honours the vital role chartered accountants play in financial transparency, corporate governance and economic growth. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the 78th CA Day celebrations as chief guest at Vigyan Bhavan in New Delhi. 7 people.

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रुन FM है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब वक्त है आपको ले जाने का अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है रेडियो ऑन डिमांड। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर आपको पेश करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and...
4: Radio on Demand. सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के इस बेहद पसंद किए जाने वाले कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट, आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। हर मुलाकात की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गीतों का खजाना। दोस्तों, इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि गीतों का चुनाव हम नहीं बल्कि आप करते हैं। आपके SMS, आपके प्यारे संदेश और आपके फरमाइश ही इस महफिल को और भी खास बना देती है। चाहे गीत पुराने हो या नए हो, रोमांटिक हो या दोस्ती के नाम हो, हर सुर के पीछे होती है अपनी एक प्यारी सी याद और एक खूबसूरत एहसास। तो अगले एक घंटे बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब बजने वाला है गीत जिन्हें आपने दिल से चुना है। चलिए शुरू करते हैं रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz पर। तो दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड का सफर शुरू करते हैं आज की पहली फरमाइश के साथ। ये गीत हमें भेजा है कार्बी आंगलोंग के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक प्यारे परिवार से, और उन परिवार के सदस्यों का नाम है तेंसन क्रो, रोज मैरी तेरोंगपी, निलिका क्रोपी, अतुर क्रो और सार्लो, जो कि लंका समकर्बी अंगलोंग के रहने वाले हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका संदेश और आपकी फरमाइश ही हमारे कार्यक्रम की असली पहचान है। तो आप सभी के लिए बहुत खुशी के साथ पेश है आपका मनपसंद गीत सुनी सुनी अखियों में। उम्मीद है कि ये गीत आपको, हमारे सभी श्रोताओं को जरूर

श्रुताओ, अगली फरमाइश तो दिल छू लेने वाली है। ये प्यारा सा गीत हमें भेजा है गुममाए बागरा जी ने, जो कि हिगी बागरा गांव के रहने वाली है, और उन्होंने इस गीत को अपने प्यारे जीवन साथी, अपने हस्बैंड जुमकर बागरा के नाम समर्पित किया है। गुम्मा माई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच ही कहा जाता है कि प्यार का इजहार छोटी छोटी बातों से होता है, और अपने जीवन साथी के लिए रेडियो के माध्यम से गीत भेजना, उनके प्रति अपने प्यार और अपनापन को व्यक्त करना एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। हम दुआ करते हैं कि आप दोनों हमेशा इसी तरह से प्यार, विश्वास और खुशियों से भरे रहे। तो गुम्मे माई जी की फरमाइश, प्यारी सी फरमाइश को खुशी के साथ पूरा करते हुए

0: दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी हमें अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें एसएमएस कर सकते हैं। नंबर है 9436887808 पर। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नंबर है 9436887808 पर।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: श्रोता, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां आप अपनी फरमाइश भेजते हैं और हम आपकी फरमाइश को यहां पूरी करते हैं। तो दोस्तों, अगला गीत हमें अगला फरमाइश आई है हमें देवशीष हजारिका से, जो कि माजुली असम के रहने वाले हैं। तो देवशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माजुली का नाम सुनते ही एक अलग ही तस्वीर सामने आ जाता है। दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड के रूप में मशहूर माजुली अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृति और पारंपरिक विरासत के लिए पूरे देश में खास पहचान रखता है। हमें बहुत खुशी है कि माजुली जैसे खूबसूरत स्थान से भी हमारा कार्यक्रम को इतना प्यार मिलता है। तो देवशीष हजारिका जी की फरमाइश पर पेश है फिल्म ओम शांति शांति ओम का बेहद खूबसूरत गीत आंखों में तेरी, जिसे अपनी दिलकश आवाज दी है स्वर्गीय केके ने।

दोस्तों अब वक्त है अगली फरमाइश का। ये गीत हमें आई है हर्षित गोस्वामी जी से, जो असम के हमारे नियमित श्रोता है। हर्षित जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई एक बहुत ही प्यारा और आज की पीढ़ी का पसंदीदा गीत चुना है। उम्मीद है कि ये गीत सुनकर आपके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। तो हर्षित गोस्वामी जी के लिए पेश है वास्ते, जिसे अपनी सुरीली आवाज से सजाया है ध्वनि भानुशाली और निखिल डिसूजा ने। हर्षित जी, ये गीत खास आपके लिए।

Ρε, το τσαλίρε. Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया. पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया. I'm sorry. Excuse me.

0: This woman.
1: What about it?
0: Deserves a hug.
2: दोस्तों, बारी है एक ऐसी फरमाइश की जो वाकई बहुत ही अलग और दिलचस्प है। आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग नए गीतों की फरमाइश करते हैं या पुराने गाने, वहीं कभी कभी कोई श्रोता एक ऐसा गीत चुन लेते हैं जो हमें पुराने सुनहरे फिल्मी दौर की याद दिला देता है। ये खास फरमाइश हमें भेजी है जोगिंद्र जी, सोनाली इंगतिपी धोरमगिरा रोंगपी, जो कि कार्बी अंगलोंग असम के रहने वाले हैं। ये हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप तीनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सॉन्ग चॉइस वाकई बहुत ही अनोखी है और हम पूरे यकीन है कि हमारे कई श्रोता इस गीत को सुनकर पुरानी यादों में खो जाएंगे। तो आइए, सभी के लिए पेश है नागिन फिल्म का ये सदाबहार गीत, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतिपी और धोरमगिरा रोंगपी से।

दोस्तों अगली फरमाइश आई है हमें सेंकी पार्क अरुणाचल प्रदेश से, आरफ कप ईटानगर, इन्होंने ऐसा नाम कुछ दिया है। तो उन्होंने ये बॉर्डर टू फिल्म का ये गीत की फरमाइश की है।

श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड की आखिरी फरमाइश आई है हमें गीता जी से, जो कि असम के रहने वाली है। उन्होंने अरिजीत सिंह का ये गीत हमें फरमाइश की है। इस गीत का नाम है तेरे संग इश्क। तो गीता जी, आपकी फरमाइश पर आपका मनपसंद गीत पेश है सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो इसी के साथ हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूं कि आपको सारे कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। और आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा भी जारी रहेगी अब से लेकर दिन के 3:30 बजे तक। आज की इस पहले प्रसारण सभा को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा के लिए आरजे कानिक स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। मुझे दीजिए आज्ञा आपकी उद्घोषिका आरजे लूसी को। शुभ दिन, नमस्कार।
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर।
4: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ,
5: गीत संगीत,
6: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
5: प्यार भरे अल्फाजों में
6: दिल से दिल की बात,
5: बस आपके नाम।
6: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रो केमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर को लाभ होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 has come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, "The Act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers." He said the Act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women, and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025, effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. Newly appointed Chief of Army Staff, General Dheeraj Seth, has stressed the need to advance the modernization of the Army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. Union Ministers Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju arrived in Itanagar today to assess the flood situation and the damage caused by the recent calamity. In a social media post, Chief Minister Pema Khandu thanked Prime Minister Narendra Modi for his prompt concern and support in deputing the two union ministers to personally assess the situation on the ground. The latest passport application height fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue for passport now costs 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत,
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

नमस्कार दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हमारी पहली प्रसारण सभा और उस सभा में आपका साथ निभाया आरजे लूसी ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है दूसरी प्रसारण सभा का। और आपको बता दूं, इस सभा की मेजबानी कर रही हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी गिची कनिक।

दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्मी लहर का।

जी हाँ दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर, जहां हर लहर लेकर आती है बॉलीवुड के दिल से निकले हुए सुर और जज्बात। दोस्तों, कभी मोहब्बत की मीठी सी खुशबू, कभी जुदाई का हल्का सा दर्द और कभी दिल के उन एहसासों की कहानी जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों में बयां होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही जज्बातों के नाम है। इसी के साथ ही चलिए आपको सुनवाते हैं मेरा फेवरेट गाना। पहला गाना है फिल्म मेट्रो इन दिनों से, दिल का क्या। इस खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है राघव चेतनिया ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और इसके बोल लिखे हैं अनुराग शर्मा ने। दोस्तों, ये गीत दिल के उन उलझे हुए एहसासों को छूता है जब प्यार तो होता है लेकिन उसे बयां करना आसान नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के महसूस करते हैं इस दिल को छू लेने वाले नगमे को।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म रन का प्यारा सा गीत, दिल में जो बात है वो कह दो। तो दोस्तों, दिल की बात जब अल्फाजों का सहारा पा लेती है तो हर एहसास और भी खूबसूरत बन जाता है। और दोस्तों, अब इसके इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और दिल छू लेने वाले नगमे के साथ, और ये गाना है फिल्म जीनियस का। गीत के बोल है, दिल मेरी ना सुने। और आपको बता दूं, इस सोलफुल गीत को अपनी जादुई आवाज दी है अति पसंद।

मुसल्लम ने इसका संगीत दिया है हिमेस रेशमिया ने और खूबसूरत बोल लिखे हैं मनोज मुंतासिर ने। और दोस्तों ये गीत उस दिल की कहानी है जो मोहब्बत में हर बात समझता है लेकिन किसी की सुनता नहीं है। तो चलिए दिल की धड़कनों के साथ महसूस कीजिए ये बेहतरीन सा रोमांटिक मेलोडी।

0: subscribe now and press the bell icon.
1: दोस्तों इसी के साथ ही आज के फिल्मी लहर कार्यक्रम यही तक है। उम्मीद है आज के शुरू ने आपके दिन को थोड़ा और हसीन और दिल को थोड़ा और सुकून से भर दिया होगा। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी की राहों में अगर मुस्कुराहट साथ हो तो हर सफर एक खूबसूरत कहानी बन जाता है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आपसे इजाजत चाहता हूँ।

0: today's playlist. I hope these songs added a little warmth, joy, and positivity to your day. Stay with us because there's plenty more music and memories waiting ahead on Western Melodies. I'm Coco, and you're listening to Akashwani Itanagar.
1: के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी।

0: का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

साथ रखिए और तैयार हो जाइए एक के बाद एक बेहतरीन गीतों का लुफ्त उठाने के लिए। चलिए बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: श्रोता दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पर, और अगला गीत आप सुन पाएंगे ज़ैन मलिक की आवाज में।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट परिचय का।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं तुम्बम रीबा लीली हमेशा की तरह अपना कार्यक्रम अरुण परिचय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरुण परिचय, जैसे कि नाम से ही जाहिर

है यह अरुण एफएम रेडियो आकाशवाणी ईटानगर का ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की हर एक कड़ी में अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में तमाम जानकारियां देती हूं और इस कार्यक्रम की हर एक कड़ी में अपने खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के किसी न किसी अनोखी जनजाति की निराली संस्कृति परंपरा एवं त्योहार आदि के बारे में आपको जानकारियां प्रदान करती हूं और साथ ही उस विशेष जनजाति से जुड़ी लोकगीत भी यहां पर प्रस्तुत करवाती हूं। तो चलिए आज अपने इस कार्यक्रम की इस कड़ी में हम लोग ईदू मिश्मी जनजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित और दिबांग वैली जिले में वास करते हैं कि इनकी जो त्योहार है रेहे त्योहार पर हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोहित एवं दिबांग वैली जिले में बसे ईदू मिश्मी लोगों का सबसे प्रमुख त्योहार है रेहे त्योहार। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और बहुत ही खर्चीला होता है जो व्यक्तिगत रूप से मनाना लोगों के लिए भारी पड़ता है, इसीलिए सुसंपन्न लोग ही इस पूजा को करते हैं। और इस बाधा पर विजय पाने के लिए गांव के कुछ बड़े बूढ़ों तथा पढ़े लिखे लोग विचार विमर्श करके इस निर्णय पर पहुंचे कि इस पूजा को सभी लोग एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से मनाएं और इस पूजा में होने वाले खर्च को भी सभी लोग आपस में मिलकर बांट लें और इस तरह से इस पूजा को सब लोग बहुत ही सुंदर से बहुत ही भव्य तरीके से समस्त ग्रामीणों द्वारा संयुक्त रूप से फरवरी महीने में इस महीने की पहली तारीख से 3 तारीख तक मनाई जाती है। आज भी यह पूजा बहुत ही भव्य रूप से आयोजित की जाती है। ईदू मिश्मी लोग सूर्य को माँ मानते हैं, तो ईदू भाषा में माता सूर्य को नई इंतिया अर्थात सर्वशक्तिमान सूर्य मानते हैं। उनका विश्वास है कि सूर्य इस सारी सृष्टि का निर्माता और निर्णायक है और वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ तथा सर्वदशों में है। इससे कुछ भी छिपा नहीं है, इसीलिए इस महान महिमा सूर्य को प्रसन्न करने की बड़ी बड़ी बलियां इस त्योहार के तहत दी जाती हैं, जिसमें मिथुन भैंसा बकरा सुअर मुर्गे आदि की आवश्यकता पड़ती है। जितनी ही बड़ी और अधिक बलि चढ़ाई जाती है उतनी ही शीघ्रता से माँ प्रसन्न होंगी, ऐसे लोगों की मान्यता है। इसीलिए इस पूजा के समय बहुत अधिक मांस अपोंग जिसे यू कहते हैं और चावल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। संयुक्त रूप से पूजा करने के लिए उस गांव या क्षेत्र के सभी ईदू मिश्मी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और पूजा की सारी योजना प्रजातांत्रिक ढंग से बनाते हैं और सभी कामों का आपस में श्रम का बंटवारा करते हैं। पूजा के दिन गांव से बाहर जाने वाले मुख्य रास्ते पर गांव के बाहर लकड़ी बांस और बेत की मदद से फाटक यानी कि खूबसूरत सा भव्य सा बड़ा सा गेट बनाते हैं। इस गेट पर गांव बाहर की ओर निशाना कर तमाम बांस की खपच्चियां लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन खपच्चियों से डरकर बुरी आत्माएं तथा अनिष्टकारी देवी देवता गांव में नहीं आते और अमंगलकारी चीजें दूर भाग जाते हैं। तत्पश्चात पूजा स्थान बहुत ही खूबसूरती से उस पर बनाए जाते हैं। उसमें एक खम्बा के चारों तरफ बांस की काइन और बांस की खपच्चियां भी गाड़ देते हैं। फिर एक मुर्गे की बड़े चढ़ाते हैं और उस मुर्गे का सिर बांस की एक काइन में लगाकर गांव की तरफ गाड़ देते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि रेह पूजा की प्रारंभ हो चुकी है। बरामदे के एक खूंटे के पास जो झाड़ियां काइन आदि गड़े हुए होते हैं उससे ये संकेत मिलता है कि यू केवियू माँ आपे सांग के लिए उनके खेतों में सूखी डालियों और पत्तियों पर चढ़ाने के लिए चावल की शराब बनाई जाती है, जिसे यू के चढ़ाने से माँ अपेसंग प्रसन्न होती है, ऐसे माना जाता है। मिश्मी भाषा में चावल की शराब को यूं कहते हैं। ये लोग माँ अपेसंग को माँ लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि माँ अपेसंग उनके समाज के लिए धन वैभव खुशियाँ
आदि लाते हैं

और उसी पवित्र भावना के साथ रेह पूजा संपन्न होती है। रेह पूजा के लिए संयुक्त रूप से इन्होंने एक धार्मिक झंडा स्वीकारा है जो 23 के अनुपात में पूर्ण रूप से गहरे हरे रंग का होता है। बीच में सूर्य तथा उनकी ब्याज किरणें सूर्य की परिधि के अंदर ही मिथुन का सिर काले रंग का बनाते हैं और इस प्रकार रेह का झंडा 3 रंग का होता है जिसमें हरा, लाल और काला रंग होते हैं। हरा रंग पृथ्वी की सस्य श्यामलता, हरियाली, नदी, पहाड़, वृक्ष आदि का प्रतीक है। लाल रंग माँ नानी इंतिया यानी कि सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति एवं आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके अभाव में हर प्रकार का जीवन असंभव है। काला रंग मिथुन की महानता एवं उनकी बलि का प्रतीक है। इनका विश्वास है कि मनुष्य और मिथुन दोनों एक साथ पृथ्वी पर आए माँ सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी बलि चढ़ाने की बारी आई है। इस समय लोगों में सूर्य के बराबर स्तर का ही मिथुन का समझकर मनुष्य के बदले मिथुन की बलि चढ़ाई जाती है, इसलिए मिथुन के सिर को झंडे के बीच में स्थान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे धरती के तमाम देवी देवताएं प्रसन्न होकर लोगों के जन जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और सलामती प्रदान करेंगे। साथ ही लोगों के खेतों में अपार अनाज की उत्पत्ति की भी वर्षा करेंगे और इस प्रकार तमाम मंगल कामनाओं एवं भावनाओं के साथ रेह त्योहार संपन्न होता है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आपने ईदू जनजाति के प्रमुख त्योहार रेह त्योहार के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की। चलिए अभी इसी जनजाति के एक कर्णप्रिय गीत का हम लोग आनंद लेते हैं।

0: हमें विश्वास है कि आपको ये गीत हार्दिक पसंद आए होंगे और अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की किसी अनोखी जनजाति और उनकी अनोखी संस्कृति पर चर्चा करेंगे। पर तो अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: My honey, my soul, my soul.

Boa.

Oh,

Oh,

I'm

啊，亲啊。

Yeah.

要面膜，洗在桌，洗。

你的主意，你的主意。

那春，那一个。

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम नोटिस परिचय यहीं पर समाप्त होता है और आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा नगमा।

श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों

0: का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। और जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हिंदी क्लासिक म्यूजिक के इस खास सफर

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया इसलिए।
1: अच्छा।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: मुस्कुराइए,
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म कल आज और कल से इस गीत को। उम्मीद है इस गीत ने पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया होगा। और अब इसी सुनहरे सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और सदाबहार नगमे के साथ। फिल्म अनुरोध का ये गीत

गीत के बोल है आते जाते खूबसूरत, जिसे अपनी दिलकश आवाज से सजाया है किशोर कुमार जी ने। दोस्तों, इस गीत की मधुर धुन और प्यारे बोल आज भी संगीत प्रेमी श्रोताओं के दिलों पर वही जादू बिखेरती है। तो लीजिए पेश है अनुरोध का एक खूबसूरत गीत।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों चलिए अब चलते हैं साल 1960 की एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसने अपनी शानदार कहानी लखनऊ की तेजाब और लाजवाब संगीत से हिंदी सिनेमा में एक खास मकाम बनाया। जी हाँ दोस्तों, चौधरी का चांद एक ऐसी खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है जिसमें दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी की दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने यादगार अदाकारी की है, जबकि इसका संगीत दिया था रबी ने। दोस्तों ये फिल्म अपनी गीतों और नवाबी अंदाज के लिए आज भी बेहद पसंद की जाती है। तो लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज में वो अमर नगमा जो हुस्न की तारीफ का एक बेमिसाल अंदाज बन चुका है। आइए सुनते हैं इस गीत को, चौधरी का चांद हो तुम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। इसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमे। आइए दोस्तों, पहला गीत सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म देवदास से।

0: दोस्तों आपको बता दो, आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चाह होती है दिल से, दिल की बात। और आपको बता दो, अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज। 2:15 पर प्रसारित होगा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: against designated targets and caused no civilian casualties. The strikes came just days after 36 civilians, including women and children, were killed while 163 others were injured in Pakistani military airstrikes in Paktika and Kunar provinces of Afghanistan. National Doctors' Day has been celebrated today to honor doctors for their dedication, compassion, and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July to commemorate the birth and death anniversary of one of India's most respected physicians, Dr. Bidhan Chandra Roy. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for their exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
1: On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of Army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट

0: फेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजी लॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagements. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी।

0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। जी हाँ दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहां हम आपको 90s के हिट गानों को सुनवाते हैं। और स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक ऐसे सफर में जहां हर धुन के साथ जुड़ी है यादें, हर गीत के साथ छुपा है एक एहसास। ये है आपका अपना खास कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s, जहां हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 90s के सुपर हिट गाने और वो गाने जो दिल को छू जाते हैं और हमें ले जाते हैं उन हसीन दिनों में। तो श्रोता दोस्तों, तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल जर्नी के लिए जहां हर सुर होगा नॉस्टैल्जिक और हर पल होगा यादों से भरा। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी गिची कनिक और चलिए शुरू करते हैं 90s के सुनहरे दौर का ये खूबसूरत सफर। और आपको बता दूं, पहला गीत हम सुनने वाले हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म राजा हिंदुस्तानी से।

दोस्तों तो चलिए हिट्स अप 90s कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं अब वक्त है 90s के उस सुपर हिट नगमे का जिसे सुनते ही प्यार की दीवानगी और जवानी के वो हसीन दिन याद आ जाते हैं। फिल्म दीवाना ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया बल्कि इसके गीतों ने भी हर दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। इस फिल्म से शाहरुख खान ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और दिव्या भारती के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने दिया और बोल लिखे समीर ने। तो दोस्तों तैयार हो जाइए प्यार के इस रंगीन एहसास में खो जाने के लिए। सुनिए ऐसी दीवानगी गीत जिसे अपनी मधुर आवाजों में सजाया है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने। आइए सुनते हैं इस गीत को।

뭐 년여 라이 라우라 베이그란가 다음 잠 전미긴 야뭐 센트럴 헬라네 스테달라네 톡 남아이도 내가 타오가 다운다 달라나 크라이 타오가 빵을 만들가 2020 아 2005 배트라 가 타오가 논또 엄자원 위백싯 바랏 그랜티 포 로지갈 엔 아지빈카 미션 그라민 덤덤 자 운동아 1 타릭 줄라이 레가 부히 임플리멘트 상황도 내가 타오가 다운 달라나 크라이 타오가 런지 안 만들긴 왜 gatsong ko chong hayo kamlam ka chong san kang nga waye mo kam thao man to anja an samla ti phile ga to puira nga waye mo le ka nga waye mo ke tal mok len kam kat mata do ne ga thao ka da da la na chel thao ka ranja nga waye mo ke tal mok len anja an ga chong ko chong ga samong ja wan de phi hi to viji ram dom ta um ja wan ek an ta ding samla hing ga chong ko chong ga ta ding kamlam samong do ne ka khre ga ta da da la na chel thao ka किन अरुणाचल प्रदेश से लकला बियोराम वागे गांगा हवाई मोबाइल मोबाइल मेडिकल यूनिट दोम दाउन जाओ न्याम लेकिन अरुणाचल प्रदेश ले शाओ मो ग्रात चोंग रो चोंग नान दको नेम दम छन गंग सेट सम नक टिपी ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गुंग लग क्लिनिक आपके दुवार जावन लॉन्च कर का तो निकन दाला न चल था को नंजा अन मनशाओ तरा ने जे काम लाम समांग ग्रात चोंग कु चोंग कांग फायदा समांग जावन तंगिन टिपी किन कला अंजा अन न्याम ले दिल्ली है तने का थोक मंडो ने का थाउ का तंदन दा लरन जाय हुने फाइ का हे हेल्थ डिपार्टमेंट हि छम हि दाते ने का जा नान को ने समांग रा चोंग चोंग खिस समनक तु बि हि विलन हमंग तांग हमंग रन जान हुलक फाइ तो अन जान तत्रा समांग रो ने का थाउ का तंदन दा लना छल थाउ का रन जा लंग दकि वांग टेकचन गा चोंग चोंग वांग टेकचन सो मन रा हि न्यान्यो राय मनुम जावन दिफी ही गात सोंग गुचोंग कुंग नाम शामो पाम दम जो हताई राय लाम जावन दिफी ही खेत बचाओ अभियान दम दम जावन शुरू कर मता दुने गन दाल ना चल था गो रंजन खेत बचाओ अभियान मन जावन न्याम ले लोवाल सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट ना होवाई लग न्याम ले डिप्टी कमिश्नर ओली परमे का न्याम ने कैंपेन था गा दुने गन दाल ना चल था गो हिंग गात सोंग गुचोंग शामो चाहे मने जा खेत बचाओ अभियान जालंग होने का कुंग नाम शाव तक टपाम तक खोई राजे सत किन तक क्लेम कप माउंट जाम ही संपूर्ण ने का कुंग नाम तो पाम तो भी जान अभियान जाल चोंग चिन हुशिंग बियो मार पांग कट माइन बियो ने का थाव गना दालन दा क्राइ थाव का और डिप्टी कमिश्नर टावांग नामग्याल अंगमो कांगा हुआ जेट पीसी नंग न्याम ले टावांग लिखी कंबो नंग राने का सेवा आपके द्वार 0.2.0 जावन मेगो भिलेज त्रा कनिंग दोने कन दालना चल था और अंजना त्राम निंग गोंगल रनियाम ले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन वरा खेती बचाओ अभियान वरा सेंसस ऑपरेशन मजाम संदाम हि प्रेगा तौर अंजा समला तो भिंग्रा चोंग को चोंग टाइरिंग काम समंग डोनेगा खेगा तौर डोनेगा दालना चल थाव का तो कमान किन लाइक सोंग चाम न पाइला तो किन कमान तन जाय ग्याचिनिंग जाय मंग सोगुन मम

नहीं आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ में मिलचलांग खामते खामते हाउ कोमा हो मनाई वन बुद्धु लाखनी बीते सोंग हिंग पा साउतो सक्रेट बिमंग हिंग सांपा पेट सपेट तो सासना सोंग हिंग हापा चित सप्तो इंगनाची बिमंग सोंग हिंग साउहु तो नून जुलाई नई वन लंग खोखाम लुक चौतान सन नमसो मै हनाई थोम खाता मनाई यूनियन मिनिस्टर चिवा शिवराज सिंह चौहान खनसम किरण रिजुजू कोप्तंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडूसी लुकलेंगमेन मै नुलेम ती नमथोम ती नोयकान नुलेम ती यपया कयाओ चौफू खाउ लुक ईटानगर लोक भवन हेलीपेड मै ओकासी ओंथांग गनपा पासीघाट चेला ईस्ट सियांग मै कतई नुलेम कयाओ पुन मै लुंग सिंग खाउ खी लियांग सी का कनुलेम मान बोइंग मै ती नमथोम ngai नोयकान कयाओ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान तंकुन मान अन सुमहुन ये कनै खाउ तानवा कन कयाओ मन चौ लुक कन पा चवोंग सेंटर मै ngun kham tak choi na si kham man sang kayao लुक पासीघाट मै ओकासी मिनिस्टर खाउ कनुलेम ती नमथोम निया याजाली चेला लोअर सुबनसरी मै कयाओ मिनिस्टर खाउ वन मंगा लोयतंग मिनिस्टर केंटोजिनीसी तांग एनएच नेशनल हाईवे 13 अन वोंगकांग होज ngai पोटिन मै नमथोम कनै मै को कतै नुलेम कयाओ हो लोक मनाए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 ने तक्कू माया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खवा तल थों ने मै चाहंग औखंताने कुन मान खाओ कुपी अमू अन पासाव हावन तक हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा 2005 अनसाउ पी कौ नै मै औलाइसी थोंम वीवीजी रामजी एक्ट नै औयंग मायो त नै मै कुपी अमु लुक पावन ऑफ साएक्सी औथुन पासाव हावन हर कयो एयर कमांडर चिवा रिटायर्ड डायरेक्ट एयर कमांडर रिटायर्ड खनसम

श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस मिस मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स का।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक। और दोस्तों, अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड अपडेट का, जहाँ हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की सबसे ताजा और दिलचस्प खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एंटरटेनमेंट राउंड अप। और आपको बता दूं, सबसे पहली खबर आ रही है टेलीविजन एक्टर राम कपूर से जुड़ी। दोस्तों, रियलिटी शो लोकअप सच या सजा का लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर और होस्ट फराह खान के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। फराह ने राम को उनके बिहेवियर को लेकर सलाह दी, लेकिन राम ने अपने अंदाज बदलने से साफ इनकार कर दिया था। उनका ये जवाब देखकर फराह भी काफी एग्जास्पिरेटेड नजर आई और ये एपिसोड अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं, अगली खबर एक बड़ी अपकमिंग एक्शन फिल्म से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, फिल्म को CBFC ने US 16 प्लस सर्टिफिकेट दे दिया है और इसका रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट और 48 सेकंड। हालांकि सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले कुछ वायलेंस सीन्स में बदलाव करने को कहा है। कुछ स्टेबिंग सीक्वेंसेस को अल्टरनेट विजुअल्स के साथ रिप्लेस किया गया है ताकि वायलेंस को थोड़ा कम किया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कृति सेनन की। पिछले कुछ दिनों से उनके और बिजनेसमैन कबीर बाहिया के ब्रेकअप की अफवाहें जोर पकड़ रही है, लेकिन कृति ने एक कोजी फोटो शेयर करके इन रूमर्स पर विराम

लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बात की, जिससे फैंस के बीच उनकी रिलेशनशिप को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। और दोस्तों, फिल्मी दुनिया से एक और बड़ी अपडेट है। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्राले काफी सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट पर बनने वाली एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर होगी, जिसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। और रणवीर का ये नया अवतार देखने के लिए फैंस का एक्साइटमेंट अभी से हाई है। और दोस्तों, शाहिद कपूर के फैंस के लिए भी एक खुशखबरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कॉकटेल 2 के बाद शाहिद ने डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा की एक नई कॉमेडी फिल्म साइन की है, यानी जल्द ही वो एक फ्रेश और एंटरटेनिंग रोल में नजर आ सकते हैं। और दोस्तों, आखिर में आईएमडीबी ने साल 2024 का सेकेंड हाफ की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्म्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामायणा, अल्फा और किंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, और इन फिल्मों को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल बॉलीवुड की दुनिया से आज बस इतना ही। ऐसे ही फिल्मी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यार भरा नगमा मोहित चौहान की आवाज में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांगचो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण FM 103.1 MHz के साथ।

श्रोताओ, इसी के साथ ही अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे ईदोमिसमी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण FM 103.1 MHz के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं इदू मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर अचला पुची एल एम ए लेवलिनी एतनेची इदुमिश्मी आहोला केजी दरगालंबो यूनियन मिनिस्टर कानी शिवराज सिंह चौहान ने किरेन रिजिजू में ओना चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आतुगन ने हेलीकॉप्टर मने अरुणाचल प्रदेश माची बुरुगा अतिकोमा लेगने अथोगा ईटानगर लॉकडाउन हेलीपैड मने बागम बदा आहोगा आम है हो यू में बुनी होशपुतिन नेशनल हाईवे आए छे रुआन दे बमा अथुआ बचिदा ला होगा ऐतने है यू में ईशियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट मा दोगा है ओ इलिकु ने तांदो अतवाड्राबा बोइंग अतिको बागम बदा आहोगा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान में बुनी कई पंजर डिस्ट्रिक्ट याजाले तिकाची ओमरंगा बा इनुगी इमो अलमरोगो चिचागा ने गवर्नमेंट में अजीजी हिचा अरगाओ दा ला दबादा आहोगा आ महो काजिगे आतोड़ा बा आतुसुया टीम अब्रम आहेगा बदा आहोगा आ निहु नु मेबा एम जी नरेगा ना बा एग ने एतनाओ बीबी ग्रांटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी ग्राम जी से जने पगाम बदा आहोगा ऐसा मैं इसकी माने महाचिमो अन्यों मगानी पे आ इन्हों के मामा वान्यों मगानी लेबर जो चिमोदा ने यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मच में ला होगा ची में आ इसकी मच काफी परसेंट पामु स्टेट गवर्नमेंट में एटोची ना ला दिया के पाने स्टेट बागे में इन्हें दा लगा चाहू के जोगु पामु है बुगनी वह होने चिवुचिमा लगा इन्हों ऐसा कहने मांगा मची नुचे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम जी नरेगा मा है सेंटर में किन्ह पर्सन आई दो ने स्टेट में हु पर्सन पाऊ एठोगा जाची राज्य सैनिक बोर्ड डायरेक्टर दो ने सेक्रेटरी एयर कमोडोर रिटायर्ड आर डी मुसाबी में बुनी ईटानगर ची लॉकडाउन माने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पर्नाई को चौहा बमा बहा चौपाई सगाउ इमो नंबर आरो ए उखो प्रोग्राम दोने स्कीम ची पोआ ची जगह ही बता आहोगा अचंबा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इदुमिश्मी बोली में समाचार और इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम। आपको बता दूं, इदुमिश्मी श्रोताओं के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। और आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, हम हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को कंटिन्यू करते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं सूरज जगन महालक्ष्मी अय्यर के आवाजों में फिल्म आई हेट लव स्टोरी से।

कुछ देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा बोली में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों की सफर में यानी हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी आरजे अपर्णा। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। आपको बता दूं, अब से कुछ

दोस्तों अभी आप तानसा समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे तानसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव के 444.4 मीटर वेव यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ फ्रेंड्स, और एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कुदरत का एक वसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो। आज इस पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरे प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे तीसरे प्रसारण सेवा में। आज के इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आप सभी के साथ साथ साथ हमराही बनेंगे संचालन निष्पादक पंचानन दोले, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ। मैं रहूंगी आप सभी की अपनी आज अपर्णा। जी हाँ, करने आए हैं हम सब मिलकर एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस कुछ ही पल में शुरू करेंगे हम गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम केवल आप दोस्तों के लिए। लेकिन सबसे पहले हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे करिक का, जिन्होंने अपने ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी का भरपूर एंटरटेनमेंट की है, और चलते चलते उन्होंने मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करके गई है। तो दोस्तों हम अपनी तरफ से आरजे करिक का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू आरजे करिक, और

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-liter dual-jet, dual-vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम में। और आज 1 जुलाई है दोस्तों, और वैसे जो है आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, क्योंकि गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम एक ऐसा कंपोजिटिव प्रोग्राम है जिसमें ना हम आप सभी की केवल मनोरंजन करवाते हैं फ्रेंड्स, बल्कि कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां भी आप सभी से साझा करते हैं। मैंने कहा ना, आज 1 जुलाई है तो भारतीय और विश्व इतिहास में विशेष महत्व है आज का दिन। स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है काफी महत्वपूर्ण दिन भी इसे माना जाता है। वैसे आज नेशनल डॉक्टर्स डे है तो सभी डॉक्टर्स को, जो कि हम उनको जो है अपना सेकंड भगवान मानते हैं, तो उन सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप भी अपना ख्याल बहुत बहुत रखिएगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कि आज का दिन यानी कि 1 जुलाई को ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या हुई थी। भारत में 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो भारत का पहला उच्च न्यायालय है। जी हाँ दोस्तों, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1977 में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेप यान SLV-3 के भारत परियोजना के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। 1879 में भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी। अब हम अगर विश्व में देखें तो 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग को सौंप दिया था, जिसके बाद यह चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। 2004 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह की कक्षा में यानी कि प्लूटो में प्रवेश किया था। तो ये कुछ बातें, खास बातें जो है इतिहास के पन्नों से आप सभी के लिए थी। चलिए अब आपको कुछ बेहतरीन नगमों को सुनवा देते हैं। एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत गीतों के साथ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारे गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम का ये सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही दिन में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कोशिश की सराहना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जापान के प्रधानमंत्री सनई तकेची आज शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से आह्वान किया कि वे 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में मदद करने के लिए समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्य के साथ उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज फ्रांस की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रही है, जहां वो कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ग्रीस के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। सरकार ने उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक साइकिल देने की घोषणा की है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्य में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। इस भूकंप में बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। इस अभियान के अंतर्गत भारत वेनेजुएला के लोगों की सहायता के लिए मानवीय राहत और सहायता प्रदान कर रहा है। जून में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 23% से बढ़कर 22 अरब से ज्यादा हो गई, जबकि पिछले महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 20% बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आज जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में यूपीआई ने हर दिन औसतन लगभग 757 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। यूपीआई अब यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका समेत 8 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, जिससे ग्लोबल फिनटेक में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।

इस दल ने पहले ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से गांव के 20 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं और धान के खेतों, खरीफ फसलों और पशुधन को व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे कई परिवार तबाही से जूझ रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने नीपको कॉलोनी में स्थापित स्थायी राहत शिविर का भी दौरा किया। कई राज्यों में हवाई और जमीनी स्तर पर क्षति आकलन पूरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री आज शाम गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकेची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। यह प्रधानमंत्री तकेची की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें सशक्त करने का अवसर देगा। इस दौरान क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और प्रतिबद्धता समावेशी और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक के दौर में सीखने की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 1268 छात्रों को डिग्री प्रदान की और 56 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से फ्रांस की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि श्रीमती सीतारमण फ्रांस भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी। वे एक्स एन प्रोवेंस में फ्रांस के वित्त मंत्री रोनर लेस्क्योर के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद ईएफडी की अध्यक्षता भी करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि ईएफडी के अंतर्गत दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अधिक द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंधों और भी मजबूत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेश अंशदान अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारत नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाओं में सुधार होगा और FCRA पोर्टल के माध्यम से दान प्राप्त करने वालों को होने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो, नीति पारदर्शी हो और प्रौद्योगिकी को अपनाने की मानसिकता हो तो ईमानदार लोगों के लिए शासन के सभी रूप आसान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है तो देश की सुरक्षा लगातार बढ़ती है। यूरोबैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की। यह पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि ग्रीस में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर

0: दोस्तों आप सुन रहे थे नोकते समाचार। अगर आप हमारे नोकते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में दोस्तों आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन।

दोस्तों कहते हैं इंसान को हर चीज की कदर तब होती है जब उसके हाथ से वो चीज निकल गई होती है। जी हाँ दोस्तों, एंड सच बात कहा जाए तो इंसान को इंसान की कदर भी तब होती है जब वो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इवनिंग ड्राइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कल हो ना हो के बारे में। जी हाँ दोस्तों कब किसका समय आ जाता है हमें तो पता ही नहीं चलता और हम इंतजार में लगे रहते हैं कि कब किसी से मुलाकात करेंगे पता नहीं, और कब किसी से मुलाकात करते हैं पता ही नहीं चलता कि वो आखिरी मुलाकात थी। अरे अभी तो फोन पे बात कर रहे थे और हमें पता ही नहीं होता कि ये तो आखिरी फोन कॉल था। जी हाँ, तो दोस्तों जिंदगी में जो भी करना है वो आज ही कर लेना है, इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कल की। तो बातें तो करेंगे हम और भी, लेकिन इससे पहले हो जाए प्यारे प्यारे गीत आप सभी के लिए, एंजॉय करिए।

जी हाँ दोस्तों, तो जिंदगी में जो भी करना है आज ही कर लीजिए, कल का इंतजार बिल्कुल ना करें। हमारे दिल में बहुत कुछ रह जाता है फ्रेंड्स, और वो इंसान दुनिया छोड़कर कब चला जाता है पता ही नहीं, और फिर ढेर सारा अफसोस और उसके तस्वीर के सामने हम रोते रह जाते हैं, है ना। ओशो रजनीश ने इसी बात पे बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब तुम मुझसे मिलने आओगे, और रिश्तेदार भी मिलने आएंगे, सब मुझसे मिलने आएंगे और मुझे उसका पता भी नहीं चलेगा। तो आज ही आ जाओ ना, जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरे सारे गुनाह को माफ कर दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आज ही माफ कर दो ना, जब मेरी मृत्यु होगी तब तुम दुनिया भर में मेरी अच्छाइयों के बारे में बातें करोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आज ही कह दो ना, और जब मेरी मृत्यु होगी तो तब तुम्हें लगेगा काश इस इंसान के साथ कुछ और वक्त बिताया होता मैंने, तो कितना अच्छा होता। तो आज ही बिता लो ना दोस्तों। गमगीन बातें हो गई है ना, बातें करेंगे और भी, लेकिन इससे पहले एक और प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम किसी से मन मुटाव कर लेते हैं और जो है माफ नहीं करते हैं, ना वो हमें माफ करता है ना हम उसे माफ करते हैं। खटास भर जाती है, दोस्ती बिगड़ जाती है और एक पल उस वक्त आता है जब हमें रियलाइज होता है, जब वो इंसान हमारे जिंदगी से दूर चला जाता है, जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, केवल फोटो फ्रेम बनकर रह जाता है, तब हमें एहसास होता है दोस्तों कि काश कुछ और जो है वक्त इसके साथ में मैंने बिताया होता, काश मैंने माफी मांग ली होती। घर में अक्सर होता क्या है ना दोस्तों कि बुजुर्ग लोग होते हैं और हम जो है अपने आप को इतने बिजी हो कर लेते हैं कि क्या बताएं। और आजकल तो मोबाइल फोन ने हर किसी को एक दूसरे से जुदा कर दिया है, एक ही घर में एक ही रूम में बैठे हुए सभी लोग अपने मोबाइल पर टिक टिक टिक टिक टिक टिक आते रहते हैं, यानी कि फिंगर्स लगा के इधर उधर देखते रहते हैं, बुजुर्गों के लिए समय ही नहीं। वो शायद हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कभी ऐसे ही सुन लिया कीजिए उनके बातों को, हो सकता है कि वो आपके काम की बातें ना हो लेकिन फिर भी सुन लीजिए, नहीं तो एक दिन

आपको अफसोस होगा कि अच्छा होता कि कुछ वक्त मैंने अपने माँ बाप अपने दादा दादी के साथ में बिता लिया होता। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि इंतजार मत कीजिए, इंतजार में कभी कभी बहुत देरी भी हो जाती है। जो भी करना है, जो भी कहना है, जो भी मन मुटाव है, एक दूसरे के दिल से दिल की बात को सीधी तरह से कह दे, और माफ करना है तो माफ कर दे, माफी मांगनी है तो माफी मांग लीजिए दोस्तों। जी हाँ, वक्त शायद फिर मिले ना मिले, है ना। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि कभी भी देर नहीं कर लेनी चाहिए किसी भी बात को कहने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए, वरना फिर ऐसे ही रह जाती है। चलिए एक और गीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन यही मैं कहूंगी चलते चलते कि कभी किसी के अच्छाइयों को बता के भी देखिए, क्योंकि किसी का समय कब लिखा हुआ है वो हमें पता नहीं। एंड ऑफ कोर्स जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं होती दोस्तों जितना हम समझते हैं। बहुत समय जो है इंतजार में ही गुजर जाता है। एक्शन ले लीजिए, वो कहते हैं ना, ना मन अटकार रहा सारी उलझनों में, और जिंदगी हमें कब जी के निकल गई हमें पता ही नहीं चला। तो चलते चलते एक और बात कहेंगे, अलविदा तो हम नहीं कहेंगे लेकिन प्यार भरा एक अलविदा कहते हैं। इसके बाद जो है मिलेंगे अगले सेगमेंट में। उम्मीद करती हूँ कि इवनिंग ड्राइव का यह सेगमेंट आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। एंजॉय कीजिए इस बहुत खूबसूरत से गीत के साथ।

0: दोस्तों, कभी अलविदा ना कहना फिल्म के इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की इवनिंग ड्राइव का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे शाम की महफिल के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500.
5: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
6: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
7: गीत संगीत
8: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
7: प्यार भरे अल्फाजों में
8: दिल से दिल की बात
7: बस आपके नाम
8: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वाकई में सच्ची बात है दोस्तों कि आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक, है ना दोस्तों। शाम की महफिल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। शाम का वक्त दिल को सुकून देने वाला होता है, जब दिन भर की थकान धीरे धीरे मुस्कान में बदल जाती है और जो है प्यार का एहसास जो है वो कुछ कहता है कि किस तरह से

काम जो है हमारे लाइफ में एक खास जगह बनाता है। दिन भर की भाग दौड़ जब बदल जाता है एक ठंडी एहसास में, तब अगर आपका अपना चैनल जो है कुछ बेहद रोमांटिक गीत को लेकर आपके थकान को मिटाने के लिए, आपको एहसास प्यार भरा कराने के लिए, आपके दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए गीतों की लड़िया लेकर आता है दोस्तों, तो मैं समझती हूं कि आपका शाम को हम बिल्कुल एक परफेक्ट एम्बियंस देने की कोशिश करते हैं, और शायद हम जो है इससे कुछ खास बनाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्यार भरे नगमों के साथ हम हाजिर हुए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। जी हाँ, अब जो मैं गीत सबसे पहला पेशे खिदमत करने जाने वाली हूँ, वो जब अपनों से दूर जाने की घड़ी आती है तो दिल के हर धड़कन यही दुआ करती है कि रिश्तों की मिठास में कभी कमी ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही जुदाई इंतजार और सच्चे प्यार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करता हुआ ये गीत बस आप सभी के लिए है। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, एक और बहुत ही प्यार भरा, नजाकत से भरा हुआ खूबसूरत सी गीत आप सभी के लिए पेशे खिदमत है और मुझे 100% यकीन है कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है।
1: डाउनलोड करिए।

0: दोस्तों, इस बहुत ही इंस्पिरेशनल गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल यहीं पर संपन्न होती है। दोस्तों, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको आज की शाम को परफेक्ट बनाने में हम कामयाब हुए हैं। आपको हमारे नजराने बेहद पसंद आए होंगे। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, 6 बज चुके हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा सकेंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: शुभ संध्या दोस्तों, वेलकम बैक। वो कहते हैं ना कि सूरज की किरणों ने जब विदा का गीत गाया, आसमान ने सुनहरी चादर ओढ़ लिया, हवा में घुली मिट्टी की भीनी सी महक, दिन के थके पलों ने चैन से सिर झुका लिया, पैरों की शाखों पर परिंदों का लौटना, जैसे दिल को अपना घर का रास्ता मिल गया, सांझ की गोद में लिपटी ये नरम सी खामोशी, हर थकान को मीठे मीठे सपनों में बदल गया। आज की शाम दोस्तों, आप सभी के नाम और हम शुरू करेंगे धुएंदार गीतों के साथ। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट के साथ और इसे आप सभी के लिए पेशे खिदमत किया जा रहा है FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till the stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: Attention! Pare Hydro Power Station.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।

दोस्तों, फिल्म लूटमार के गीत के साथ ही हमारे आज के हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे आदि समाचार, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, और आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे आज के कलाकार के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh. And then

0: up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
1: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार प्रोग्राम में। ये वो सेगमेंट होता है जहां पर हम आपको सुनवाते हैं एक ही एक्टर या एक्ट्रेस के सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स या फिर संगीतकार गीतकार। जी हाँ, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई वो तमाम लोगों के बारे में हम बात करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बॉलीवुड से जुड़े हैं और उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म्स में जो है शिरकत की है। उनके गाने को हम बजाते हैं और जो है आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि अपने जमाने की एक बहुत ही उम्दा अदाकारा को आपके सामने पेश खिदमत करना जो वाकई में अपने आप में किसी परिचय के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, और उनके गाने जो है उनके फिल्म्स के सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आज भी जी हाँ बेहद मशहूर है। और ये फिल्म्स के सॉन्ग्स जो है आज भी हैशटैग इंस्टा और फेसबुक की ट्रेंडिंग रील्स में शिरकत करते हैं। हिंदी जगत की मशहूर और मारूफ अभिनेत्री जिनका नाम रखा गया था फातिमा राशिद, जी हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें नाम मिला नरगिस का। नरगिस का जन्म जून 1929 में हुआ था, 1 जून 1929 में हुआ था। मात्र 6 साल की उम्र में ही नरगिस बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। चलिए बताएंगे और भी उनके बारे में बातें करेंगे, ढेर सारे उनके फिल्मों के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, लेकिन हो जाए एक बहुत ही प्यार भरा गीत। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, नरगिज 14 साल की उम्र में ही महबूब खान साहब की फिल्म तकदीर में बतौर हीरोइन के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इनकी जोड़ी जो है दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ खूब जमी, चाहे वो दिलीप कुमार हो या राज कपूर, और नरगिज के फिल्म अंदाज हो या फिर आवारा, बरसात, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्में इनकी रही। और सबसे ज्यादा जो है राज साहब के साथ इन्होंने फिल्में की है। ये किस्सा भी बहुत मशहूर है कि राज कपूर कब नरगिस से मिले थे। हुआ यूं कि राज साहब को नरगिस की माताजी के साथ में मिलना था और उनके घर गए, और जब उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया तो दरवाजा खोला नन्ही जो है नरगिस ने, और उनके हाथों में जो है बेसन के जो पकोड़े वो बना रही थी, उस वक्त कहा जाता है कि उससे बेसन से सनी हुई थी, और उन्होंने माथे पे हाथ फेरा और इस तरह से उनके माथे पर भी वो बेसन लग चुकी थी। जी हाँ, और इस सीन को राज साहब ने अपने जहन में उतार लिया, और जब उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई तो उस फिल्म में जब डिंपल कपाड़िया को मिलने के लिए ऋषि कपूर जाते हैं, तब उस समय में जब डिंपल कपाड़िया दरवाजा खोलती है, उस वक्त उस सीन को वहां में रिफ्लेक्ट की गई थी कि डिंपल कपाड़िया के सर पे भी, यानी कि फोरहेड पे पकोड़े, जो बेसन जो बना रही थी वो पकोड़े तल रही थी, बेसन ढेर सारे उनके सर पे लग चुके थे, और इस सीन को उन्होंने बॉबी में ही रिफ्लेक्ट की थी किए थे। जी हाँ, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत हीट रही। जी हाँ दोस्तों, और कहा जाता है कि दोनों में प्रेम संबंध भी बहुत गहरे रहे, लेकिन जब दोनों में से किसी ने भी दोस्तों कभी भी किसी इंटरव्यू या आम तौर पे कभी भी इसे डिक्लेयर नहीं किया गया, कहा तो ये भी जाता है कि राज साहब को जब पूछा गया कि क्या आप जो है नरगिस को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने केवल एक ही बात कहा था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग है, और रियल लाइफ को रियल तक ही रहने दीजिए। चलिए बातें करेंगे और भी, लेकिन हो जाए एक और प्यार भरा नगमा इनके ही फिल्म से।

दोस्तों, जहां नरगिस बतौर हीरोइन के रूप में बॉलीवुड में पाव जमा चुकी थी, वहीं महबूबा खान ने एक बड़ी फिल्म की प्लान वो बना रहे थे। वो फिल्म थी मदर इंडिया, जिसमें इन्होंने माँ का किरदार निभाया, जिसमें जवानी से लेकर बुढ़ापे की कहानी, या जिसे नरगिस जी ने बिल्कुल जवानी से लेकर बुढ़ापे की जो कहानी है बखूबी निभाया। और इस फिल्म के लिए नरगिस को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया और जो है नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। एक किस्सा ये भी है कि बिरजू का किरदार जिसे सुनील दत्त ने निभाया था, दोस्तों उसे दिलीप कुमार निभाने वाले थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ये कहकर मना कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि मैं पूरे फिल्म में नरगिस को माँ माँ कह के बुलाऊं। और इस तरह सुनील दत्त को ये फिल्म मिली। कौन जानता था कि फिल्म का बिरजू नरगिस से शादी कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मदर इंडिया के शूटिंग के दौरान भयंकर आग लगी थी सेट पर और सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था और दोनों करीब आने लगे। और 11 मार्च 1958 में दोनों ने शादी के परिणय सूत्र में दोनों बंध गए। जी हाँ, तो चलिए बातें करेंगे और भी, लेकिन हो जाए इनके फिल्मों से कुछ प्यारे प्यारे गीत।

दोस्तों, शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई, यानी कि वो एमपी बनी। फिर इसी बीच उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गया और जो है नरगिस कुछ ही समय में इस दुनिया को अलविदा कह गई और इस तरह एक सुनहरा दौर जो है खत्म हो गया। नरगिस जहां भी है, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे ओर से, अरुण एफएम की ओर से, हम यही कहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका सदाबहार नगमों का कारवा यूं ही चलते रहेगा। हम सुनते रहेंगे उनके फिल्मों के गीतों को, उनके फिल्मों को देखेंगे और एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाले गीतों को हम एंजॉय करेंगे। बहरहाल दोस्तों, चलते चलते मैं इस नगमे के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ। श्रद्धा सुमन नरगिस को अर्पित करते हुए हम अपनी आज के कलाकार की जो ये सेगमेंट है, इसे हम अब यहीं पर संपन्न करेंगे। और साथ ही हम बता देते हैं आप सभी को कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का। तो दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से मिलूंगी यहीं पर, यानी कि अरुण एफएम पर 7:05 पर। आप इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिए।

tin lo tu tu ra che ke che pa ke ji ke gu da mu lu kham a la ba gu go la ka ka ji ku mu kham me pa ta do ok so ke ka go we go ji la ri ga ti no lo so le dar gu de kha si bi isi ga tu de do ke du ko ba mu ju ku na mi ke ten a gom a kham jam mi si gri ke la ga ri go ra na te kham ha ko bu ko ji te ta ke lu ku lo la do ra da ba ba ke ga lu ku lo ke a gom a kham jam der jap ba mi si nya ta pu ku na ba kham la me pa ta do विकसित भारत ग्रांति फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 नियम हम सिलो लोक भारत मोग कुछ कोरा के दाम लो तुले ग्रुप को ने हम में पातो और भारत के नंबर लोग ने गुटे ने मरी मर को अन्य लो सो आलो चिमरे आकें चेम्यू वाला लोग के मरी मर को हम पाम दुकु बसो के नियम हम मदर जी को हम में पातो और अन्य चेम्यू को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांति एक्ट मनरेगा 2005 हम मदर लासोक विकसित भारत ग्रांति फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 हम मपकुमा और ओतलो नंपोम निगत ने मरे मर को अनिलो आलो चिमरे आकेन ग लेगा बा पाम कुनाम हम सोक नियम से आलो चिमरे आकेन चेनी गोला लोंग ग लेगा बा पाम दुकु बा मुच पुगुन बा हम ने पाता तो और सोक इम्प्लॉयमेंट ग्रांटी में नाम लो मोबे मोलो ला मोलेन जिनाम से नाम पोम लो डेवलपमेंट हम अलब लेन दागलेन डब ला सी नाम गु नाम हम नाम पोम लो अलब सीलन गलेन गम मोद कुब मुझ पुकुन बा हम ला में पाता तो नो शिंशी पुशी मा खासवानी इतानो पुकुम लो के थाल दो न्या तो राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर कम सेक्रेटरी यार काम्योदर आरती मोसाबी ये मोर्ग से आलहोईटानगर के लोक बाबन लो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के टी परनायक ने कारक तारीख कुंभ और सोक निदुम एनी ग कारक तारीख सिर लो सो एक सर्विसमैन ला वीर नारेज निव निमाक लो पामे लामी गन ओक बुपुल ग इमिंग निगत ग लेगा राज्य सैनिक बोर्ड ग ओसो से नाम ते लो उन्नति कुदु काम रेजिमेंट जुकुनाम ग लुक लोक आगम आह मेगो जापका मेसी न्याप कुम में पातम और राज्य सैनिक मिशन के हम डायरेक्टर का सेक्रेटरी लो रिगो मेंगो हम अलग रिगो पाग मोमा लुक चिंसो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के गुदा गुदे है इसीर आपा मानम लगा बा बेटरियंस में नम ला बुई पुल के आगो लो सिगर के कुन गुदे के रिगो मेंगो हम अलग रेजिमेंट जी ताक लो मेगो रिगो के मिस कुनाम के आगम आमुलु हम यार कंबोडोर मोसाबी ये आगम आहम गवर्नर ने जापा मिस्टाप कुम हम में पाता दो और राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर का सेक्रेटरी हम शेग ग ग्रीक ला रिगोमेंगो हम मोमा तक तक अलग रिगला अलग ने नाम ते लो रिलेंडा कलन का नाम लगा बा यार कंबोडोर मोसाबी ने अलग मेड कुने हम ला जब तक जागम आगोम हम गवर्नर ये जाप कुने में हम ला में पाता तो इस्तेमाल का कीब मोक ने गुदा एर दूर मिसी को क नंपोम ते लो ला आतो आतो नंपोम ते लो न्यून पोन का पहले लो अलग जिति जीरन मधु कुब विभिन्न विलेज प्रोग्राम क्लिनिक आपके द्वार आरा लोग शिरोम शिरिनिवा अलग अरुणाचल प्रदेश लो मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU में नाम हम लांच मरब जीर कुने हम ना अरुणाचल प्रदेश स्टेट के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर धर्म व्यूरम भागे ये जावलें जीप कुमे हम मैं पातो और मोर्गन से आरहो नितने दिल्ली लो मोबाइल मेडिकल यूनिट ग रेटोमेंट तो ला शोक नैन पोन हम यम मोला जीवो बुगो गद कुद हुकन लुक लोक आगम आम लुक हम चेनाम पनाम ग कुक लो शोक मोबाइल मेडिकल यूनिट हम स्टेट लो मुतु जीर कुने हम ला हेल्थ मिनिस्टर नर्मा वेरों बागे ये आगम हम जाको जिकने में हम ला में पाता तो सुटी पोता पुर ग पर लो ला सारे गद ग आरा लो अलब सिबाम ग बाम दबला और आरन ग स्कूल आ गद ग एग्जाम लो अलब पास मोद कुब मेकारेजी में नाम गदिशिम मिलु ह अलब रिपुमरी दाम ला रिबाम में बाम ग ग्रीक ला रिलन दागलन गद ब रिदुकुन हम ला मोर ग से आल हो पापुम पर डिस्ट्रिक ग दिशी नर्म लोफसांग तेसरिंग या जाप कुम हम में पातो और सीबीएसई एग्जाम लो स्कूल आ गद ग ये दे नो पास पुकुद आरने ग पुर रेब गोन ग तलो पुर रिगो हम अलब रिग या गद कुब
Jabda Japa Mrs. Sakaba Department of Education UPA

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी समाचार। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।
1: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: Attention! Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट के साथ, लेकिन इससे पहले हो जाए दो लफ्ज आप सभी के लिए। बैठा हूं हमेशा शांत मगर अब कुछ करके दिखाना है, अपने हौसले अपने इरादों से पूरे जग को दिखाना है। जीतना है अब खुद से ही मुझे, खुद को ही हर पल हराना है। दुनिया की मोर और भीड़ की जरूरत नहीं, मेरे अंदर ही पूरी जमाना बिल्कुल भरी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हौसले का नाम ही तो जिंदगी है ना। तो चलिए बैक टू बैक सॉन्ग्स आप सभी को हम सुना दे, एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम जारी रखेंगे हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट। जी हाँ, आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन समाज में डॉक्टरों के योगदान को सम्मान देने और मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, डॉक्टर्स हमारे सेकंड भगवान भी होते हैं, हम इन्हें सेकंड भगवान के रूप में ही मानते हैं। भारत में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत साल 1991 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि डॉक्टर बीसी राय का जन्म जुलाई 1, 1882 में हुआ था और उनका निधन भी इसी दिन हुआ था, यानी कि 1 जुलाई 1962 को ही हुआ था। उनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों ही एक ही दिन पड़ती है। चिकित्सा क्षेत्र में उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए थी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, और एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत सी गीतों को।

0: Hydropower station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण FM है. अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक. जी हां दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे अपना गीत कार्यक्रम के साथ.
2: जिंदगी में दोस्ती के मायने कौन नहीं जानता. कहते हैं ना कि दोस्त एक चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा ले. हालांकि अब दोस्ती के रिश्ते भी बिखरते जा रहे हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में मसरूफ जो है. पर मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, आपको बता दूं कि अगर आपको जिंदगी में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी तो निकल पड़ी. जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और कार्यक्रम है अपना गीत. और अपना गीत कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपके रेडियो साथी कईर अतर. तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनाने जा रही हूँ दोस्ती के दीवाने की ऐसा गीत जिसे हम और आप सब ने बहुत बार सुने हैं और जब भी सुनते हैं मजा आ जाता है. माय डियर फ्रेंड, ये है गीत के बोल और सिदा बानर्जी की आवाज. जी हाँ, निशी गीत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा.

अभी आप सुन रहे थे लापांग दादा की आवाज में नोक्ते गीत। श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में 103.1 मेगाहर्ज, और कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं तागिन गीत युकार दुई की आवाज में।

सुबह अपनी रोशनी से दिन के आगमन का संदेश देते हैं। पर मेरे प्रिय, आपका क्या संदेश है? क्यों आप इतने खामोश है? श्रोता, अपना गीत कार्यक्रम में लीजिए पेश है गालो गीत। ये विरह गीत है स्वर्गीय तोई कातो की आवाज में। छोटी सी उम्र से ही गाने में रुचि थी उनकी। हालांकि तोई कातो ज्यादा गीत नहीं गाए हैं, दो तीन ही गीत गाए हैं, पर

श्रोता सुन रहे थे गामुहा जोहम की आवाज में वांचो गीत। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अपना गीत। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में आइए सुनते हैं अंतिम गीत तागे तायु की आवाज में आपतानी गीत।

0: श्रोताओं, इसी अपतनी गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल की वादियों से होता हुआ बिल्कुल अपना गीत आपके दिल तक पहुंचाया जा रहा था FM बैंड के 103.1 MHz पर से। जी हाँ, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। दोस्तों, अब आप सुन सकेंगे युवाओं का कार्यक्रम, यूथ प्रोग्राम, और आज इसके तहत एक साक्षात्कार आप सुन सकते हैं डॉक्टर PJ शर्मा के साथ नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम निवेदन करने जा रहे हैं एक विशेष संदेश, डॉक्टर्स डे, सेवा, समर्पण और मानवता। आज के इस विशेष अवसर पर हम डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान, उनकी सेवा भाव और मानवता के प्रति समर्पण को नमन करते हैं। आइए संदेश के माध्यम से उनके अनमोल योगदान को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इस संदेश को प्रस्तुत किया है डॉक्टर PJ शर्मा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से है। उम्मीद करती हूँ उनकी ये अनुभवी विचार हमारे युवा श्रोताओं को अच्छा लगेंगे और इसके बाद

0: This has been Yuvani's Doctor's Day's special topic, Behind the Mask, Who Heals the Healers. I am Dr. P.J. Sharma, and it has been my honor to share this hour with you. Take care of yourselves. Take care of each other. That is what medicine has always been about. Thank you.
1: Shrotao, abhi aap sun rahe the Dr. P.J. Sharma ka vishesh sandesh, जो अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से है. उम्मीद करती हूँ उनके ये अनुभवी विचार हमारे युवा श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे और डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान तथा स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर आप सभी अवश्य मंथन करेंगे. तो इसी जज्बे के साथ चलिए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत.

किया गर्व परिवार ने, दुख को मन में दबाकर अपना फर्ज निभा गए वतन पर कर्ज लगाकर। लिपटा तिरंगे में जब बेटा घर आया, लिपटा तिरंगे में जब बेटा घर आया, माँ ने भी आंसू पोंछ कर देश को अपना मनाया। तो इसी जज्बे के साथ आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत।

दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना।

0: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं आप सभी का बेहद ही मन पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि फूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ। ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनाते हैं आपको अगला गीत।

खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज के फूले बिस्तरे गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपको हमारे आज के सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों ना घड़ी एक की सुई जो है एक जगह टिकती है और ना ही वक्त एक जैसा रहता है। वक्त तकाजा देकर कह रही है कि वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखे। और जी हां दोस्तों, अरुण एफएम को यूं ही प्यार बरसाते रहे। आज नेशनल डॉक्टर्स दिवस है तो नेशनल डॉक्टर्स दिवस पर हमारे सुनने वाले सभी डॉक्टर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही कहेंगे कि जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना बेहद जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ संचार निष्पादक पंचानंद दोले, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सबकी अपनी आरजे अपना को रुखसत होने की इजाजत दीजिए। आगे के कार्यक्रमों के लिए और एफएम गोल्ड चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: चल चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन्स मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा। और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
3: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का, मैं अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोर्सा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
3: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे

0: हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
1: जी
0: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
1: जी
0: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए, इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे
1: जी
2: स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की top 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है,
1: जी
2: ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे
1: जी
2: 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया।
1: जी
0: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं कि
1: जी
0: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी
1: जी
0: करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए

0: काम चल रहा है। 278 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड
1: हो
2: रही है।
1: कर रहे हैं हम
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
3: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
3: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब, वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज है उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोग

0: के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं।
1: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
0: जी
1: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
0: जी
1: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
6: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
5: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
6: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
5: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतया संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेंगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हो। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometer long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. The government today gave a 1-year extension to Foreign Secretary Vikram Misri till the 14th of July next year. The Appointments Committee of the Cabinet approved a 1-year extension in service for Foreign Secretary Vikram Misri, who is a 1989 batch IFS officer. Mr. Misri assumed charge as Foreign Secretary on the 15th of July 2024. Earlier, he was also India's ambassador to China from January 2019 to December 2020.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायुची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल होंगी शामिल। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से जारी। और अब समाचार विस्तार से। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्त

0: हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और मलेशिया ने आज नई दिल्ली में 12वीं उप समिति की बैठक के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक में सैन्य आदान प्रदान, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग सहित विभिन्न रक्षा गतिविधियों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने सोमनाथ घोष को मलेशिया में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री घोष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों या विस्थापित न्यासी संपत्ति बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर भी चिंता जताई। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी सेना ने एक सप्ताह में दूसरी बार रूस की प्रमुख उफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रूस के पेंजा क्षेत्र में मिसाइल घटकों का विनिर्माण करने वाले एक संयंत्र पर भी हमला किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि उफा रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े लुब्रिकेंट उत्पादों में से एक है और यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन हमलों ने रूसी बढ़त को धीमा कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 16 रूसी क्षेत्रों क्रीमिया और आजोव सागर और काला सागर के जल क्षेत्र में 179 यूक्रेनी ड्रोनों को रोकने की सूचना दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। मंत्रालय ने कहा कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 घायल हो गए थे। पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों के बाद अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हस्ताक्षरित वाणिज्य दूत संपर्क समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी सूचियों का आदान प्रदान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। उन्होंने भारत की महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसमें भारत को वर्ष 2047 तक 25 से 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। ये वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत नए बदलाव 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब ₹2,500 होगी। 60 पृष्ठों वाला साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब ₹3,500 निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये ₹6,000 होगी। 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के विद्यार्थियों

फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंदर कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल शामिल होंगी। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने 1 सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख उफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।